से शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। नाम, उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा, उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन, ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां, उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य, उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: भगवान, मैं आपको वर्षों से सुन रहा हूं, लंबे अरसे से मैं आपके पास हूं। मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परोसी परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद

आप मेरी दृष्टि में और मेरे हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे, इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मेरे पास दो ढंग से हो सकते हो, एक तो विचार से, बुद्धि से, और एक हृदय से और भाव से। बुद्धि और विचार से अगर मेरे पास हो तो बड़ी अड़चन होगी, रोज रोज विरोधी वक्तव्य होंगे, रोज रोज तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, फिर भी तुम सुलझा ना पाओगे। बुद्धि कभी कुछ सुलझा ही नहीं पाती। जहां सीधी सीधी बात हो वहां भी बुद्धि उलझा लेती, तो मेरी बातें तो बड़ी उलझी। जहां सब साफ सुथरा हो वहां भी बुद्धि समस्याएं खड़ी कर लेती। तो मैं तो उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो बड़े धुंधलके से भरे। एक ही रास्ते की बात हो तो भी बुद्धि विरोध खोज लेती। ये तो अनंत रास्तों की बातें, विरोध ही विरोध मिलेगा। ऐसा मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसका हजार बार खंडन न किया हो। तो यदि बुद्धि से मेरे पास हो तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओगे या बुद्धि को छोड़ दोगे, या भाग जाओगे। बुद्धि को बचानी है तो मुझे छोड़ना पड़े, मुझे बचाना है तो बुद्धि छोड़नी पड़े। और कोई सौदा और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से बुद्धिवादी मेरे पास आते हैं, हट जाते हैं। उनको अपनी बुद्धि ज्यादा मूल्यवान मालूम होती है, वो उनका निर्णय। उन्हें मैं बहुत बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि वे उसी बुद्धि को पकड़ रहे हैं जिस बुद्धि से कुछ भी नहीं पाया। इधर मैंने एक मौका दिया था निर्बुद्धि होने का, एक द्वार खोला था, अनजान अपरिचित। हिम्मत होती और दो कदम चल लेते तो कुछ पा जाते, कोई झलक मिलती, कोई जीवन का स्वाद उतरता। लेकिन घबरा के उन्होंने अपनी बुद्धि की पोटली बांध ली, भाग खड़े हुए। उसी को बचा लिया जिसके सहारे कुछ भी नहीं पाया था। इसलिए मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कहता। जो सच में बुद्धिमान है उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे, तो भी मेरी बातों का रस विरोधाभासों के बावजूद उनके हृदय को आंदोलित करता रहेगा। एक ना एक दिन हिम्मत करके वे अंधेरे में मेरे साथ कदम उठा के देखेंगे। उसी दिन उनके भीतर क्रांति हो जाएगी। उनकी चेतना की धारा बुद्धि से छिटक के हृदय के मार्ग पर बहने लगेगी। वही एकमात्र क्रांति है। तो जो बुद्धि से मेरे पास आए हैं, या तो रुकना है तो बुद्धि खोनी पड़ेगी। वही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बचानी है तो मुझे खोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरा जो वर्ग है, जो हृदय के कारण मेरे पास आया है, जो मुझे सुनकर नहीं, मुझे सोचकर नहीं, मुझे देखकर, मुझे अनुभव कर मेरे पास आया है, जिसने धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रेम का नाता बनाया है, वो नाता बौद्धिक नहीं है। उस नाते में मैं क्या कहता हूं कुछ लेना देना नहीं, मेरी मान्यताएं क्या हैं उनका कोई विचार नहीं, मैं क्या हूं वही मूल्यवान है। उनके ऊपर में कितने ही विरोधी वक्तव्य देता चला जाऊं कोई अंतर न पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर से जो मेरा साथ जोड़ा है वो अविरोध का है।
हृदय का है। बुद्धि सोचती है कौन सी बात ठीक कौन सी बात गलत, बुद्धि सोचती है कौन सी बात किस बात के विपरीत पड़ रही है, बुद्धि सोचती है कल मैंने क्या कहा था आज मैं क्या कह रहा हूं, बुद्धि हिसाब रखती है। हृदय तो क्षण क्षण जीता है, अतीत को जोड़ के नहीं चलता। मैंने कल क्या कहा था उससे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन, और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्मखोज के लिए कहा। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिसलिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। अगर तुमने प्रेम से मुझसे संबंध जोड़ा तो तुम देख पाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट होगा, तब तुम जन्मों जन्मों मेरे साथ रहो और तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना उठेगा। ये शुभ है, ये महिमापूर्ण है। प्रेम ने कभी कोई प्रश्न जाना ही नहीं। हां, कभी जिज्ञासा उठ सकती है, जिज्ञासा बड़ी और बात है, इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। प्रश्न तो उठता है तुम्हारी जानकारी से, तुम कुछ जानते हो उससे प्रश्न खड़ा होता है, जिज्ञासा उठती है अज्ञान से, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तुमने वेद पढ़ा, फिर मैंने कुछ कहा, और अगर तुमने जो वेद में पढ़ा है उसके विपरीत पढ़ा तो प्रश्न उठेगा। तुमने गीता पढ़ी और मैंने कुछ कहा, और तुम्हारी पढ़ी गई गीता से मेल न खाया तो प्रश्न उठेगा। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान से उठता है, तुम्हारी सूचना से, जानकारी से उठता है। प्रश्न का केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान डगमगाया, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो, तुम बेचैनी में पड़ गए, असुरक्षित हो गए, सब साफ सुथरा मालूम होता था, भ्रम खड़ा हो गया, मैंने कुछ कहा उसने तुम्हें डमाडोल किया, तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम प्रश्न पूछते हो इस पार या उस पार। या तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दूं ताकि तुम मुझे ठीक मान लो, और या मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ताकि तुम अपनी ठीक को ठीक माने चले जाओ। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है, जिज्ञासा अज्ञान से पैदा होती। छोटा बच्चा पूछता है तब जिज्ञासा है, उसे कुछ पता नहीं, वो पूछता है संसार को किसने बनाया। एक हिंदू पूछता है संसार को किसने बनाया, वो जान के ही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया, तुम भी मानते हो या नहीं, किसने बनाया संसार को। उसके प्रश्न के पीछे जानकारी खड़ी है। एक छोटा बच्चा पूछता है किसने बनाया, उसके प्रश्न के पीछे कोई जानकारी नहीं है, विराट जिज्ञासा है। वो कुछ मान के नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके पूछने में एक निर्दोष भाव है, वो जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है। तुम जानते ही हो इसलिए पूछते हो, तो तुम जब भी पूछते हो तुम्हारा प्रश्न एक तरह का विवाद है। जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है उनके प्रश्न तो नहीं उठेंगे, जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा सत्य की खोज पर बड़ी जरूरी है।
प्रश्न, विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो काम के, सत्य को खोजना हो तो बाधाएं। पूछा है, वर्षों से आपको सुन रहा हूं, लंबे अरसे से आपके पास हूं, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। ये कुछ प्रेम ऐसा है कि बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं। जो घट जाए वो भी कोई प्रेम। ये चांद कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है। पूर्णिमा कभी आती नहीं, बस आती मालूम होती। प्रेम के रास्ते की यही खूबी है, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, और पल को भी नहीं यह क्रम ठहरता। पांव मंजिल पर नहीं पड़ता किसी का, प्यार से प्रिय जी नहीं भरता किसी का। जिस जी भर जाए वो प्रेम नहीं, जिस जी भरे ही ना वही प्रेम है। भर भर के ना भरे, बार बार तुम लगो कि अब लबालब हुए, अब लबालब हुए, जब झांको तब पांव की अभी और जगह रह गई, अभी और भरना है। मंजिल सदा पास आती लगती है, हाथ बढ़ाया मिल जाएगी, पर पांव मंजिल पर कभी नहीं पड़ता। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। समय सिकुड़ता जाएगा, प्रेम के सामने समय छोटा है। समय कैसे बीत जाता है प्रेम की घड़ी में पता नहीं चलता। तुमने कभी ख्याल किया, तुम प्रेमी के पास बैठे हो, घंटों बीत जाते हैं, ऐसा लगता है पल ही बीते। और तुम किसी दुश्मन के पास बैठे हो, पल बीतते हैं और ऐसा लगता है घड़ी मानो ठहर गई, घंटों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं नरक अनंत है, दुख में समय लंबा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग क्षणभंगुर है, सुख में समय छोटा हो जाता है। आया नहीं गया नहीं, और आनंद में तो समय परिपूर्ण शून्य हो जाता है। इसलिए आनंद को कालातीत कहा है। फिर से तुम सोचना कितने समय तुम मेरे पास रहे, बहुत थोड़ा मालूम पड़ेगा। अगर गौर से देखोगे तो शायद तिरोहित ही हो जाएगा कि रहे ही कहां, अभी आए थे, क्षण भी नहीं बीता, या क्षण कहना भी ठीक नहीं। कुछ बीतता नहीं मालूम पड़ता, कुछ ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए तुम जितनी ज्यादा देर रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे, कम रहे, कम रहे। ये जल कुछ ऐसा है कि पीने से प्यास बढ़ती, जिस प्रेम से प्यास बुझ जाए वो प्रेम नहीं। जिस प्रेम से प्यास अनंत होकर जलने लगे, प्रखर होकर जलने लगे, वही प्रेम प्रेम है। और वही प्रेम प्रार्थना बनेगा, और वही प्रेम तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। प्यास जब ऐसी हो जाए कि तुम मिट ही जाओ और प्यास ही बचे, बस प्यास बचे, तुम ना बचो, एक व्याकुलता बचे, एक विरह बचे, एक उत्तप्त अभीप्सा बचे, तुम खो ही जाओ, प्यासा बचे ही ना। क्योंकि प्यासे के कारण भी प्यास पूरी नहीं हो पाती। कुछ शक्ति प्यासे को मिलती, कुछ प्यास को मिलती, बट जाती। जब प्यास ही प्यास होती है और प्यासे के पास अपने को बचाने की शक्ति भी नहीं बचती, तभी प्यास प्रार्थना हो जाती, तभी प्यास परमात्मा हो जाती। यहां

ताकि प्यास बढ़ती जाए। परमात्मा प्यास से गौण हो जाए, भक्ति भगवान से महत्वपूर्ण हो जाए। क्योंकि जब तक भक्ति साधन है तब तक तो तुम छुटकारा चाहोगे कि जल्दी पूरा हो, रास्ता पूरा हो, मंजिल आए। जब भक्ति साध्य हो जाती, यहां तुम्हें मैं ऐसी ही प्यास की तरफ ले चला हूं, तो कितना समय तुम रहे ये बात बड़ी सोच लेने जैसी है, ज्यादा समय रहे नहीं। ये प्रश्न पूछा है आनंद त्रिवेदी ने, माना बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अभी क्षण भी कहां बीते, अभी अभी आए थे, अभी बैठे ही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। और तुम विचारोगे तो ऐसा ही पाओगे, अगर ज्यादा देर हो गई तो उठने का वक्त करीब आ गया, जब ज्यादा देर होने लगी तो आदमी उठने की तैयारी करने लगता है। तुम और भी बैठे रहना चाहते हो, तुम रुके ही रहना चाहते हो। जब तक उठने की आकांक्षा खड़ी ना हो जाए, जब तक यहां से दूर जाने की आकांक्षा ना हो जाए, तब तक कहां देर हुई, अभी तुम उबे नहीं। बुद्धि जल्दी उब जाती, बुद्धि बड़ी छिछली है, उसमें कोई गहराई नहीं, शोरगुल बहुत है जैसा उथली नदियों में होता है। हृदय कभी उबता नहीं, बड़ा गहरा है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धार बड़ी धीमी सरकती। पूछा है मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कभी कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा। शुभ है, सौभाग्यशाली हो, बड़ा मंगल सूचक है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता सभी को, दुर्भाग्य। जिसको होता है आनंदित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक बड़ी गहरी उपलब्धि तुम्हें हो रही, जो वक्तव्यों से नहीं डिगाई जा सकती। मैं क्या कहता हूं इसकी तुम्हें अब चिंता नहीं है, तुम्हारे सामने मैं क्या हूं यह प्रकट होने लगा। मैं कौन किन शब्दों का उपयोग करता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे शब्दों में झांक के मेरे शून्य को देखने लगे। मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं, परमात्मा के खिलाफ कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों के पार मुझे खड़ा हुआ अनुभव कर लेते हो। तुम मेरे गीत की धुन को पहचानने लगे, मैं किस भाषा में गाता हूं कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हें भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम मेरे गीत की धुन से राजी होने लगे, तुम्हारी लयबद्धता बंधने लगी। नफल सफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद। पंडित है, मौलवी है, दार्शनिक है, विचारक है, उससे क्या लेना देना, क्योंकि यहां तो मरने की कला सिखाई जा रही और वो तो सिर्फ दृष्टि मत विचार का उपद्रव है। पंडित तो केवल शब्दों का जाल है। नफल सफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत, धर्म तो दिल की मौत है, यहां तो मिटना है वो अंदेशा और नजर का फसाद, और वहां तो केवल दृष्टिकोण नजरिए के झगड़े। यहां तुम्हें कोई झगड़ा थोड़ी सिखा रहा हूं, यहां तो झगड़ने वाले को कैसे विसर्जित कर दो यही सिखा रहा हूं, यहां झगड़ा करने वाला कैसे विसर्जित हो जाए, अहंकार कैसे डूब

जाए, बस उतनी ही बात है। और इसलिए तो सब चिकित्साओं की बात करता हूं, जिससे हो जाए चलेगा। चिकित्सा से मेरा मोह नहीं है, इसे तुम समझ लो। तुम्हारी बीमारी मिटनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी मिटाने की उतनी चिंता नहीं, चिकित्सा से मोह है। मेरे एक मित्र हैं, वो होम्योपैथ, होम्योपैथी के दीवाने, एलोपैथी के दुश्मन। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस घर में बीमार होना मुश्किल है, क्योंकि बीमार हुए कि होम्योपैथी, कोई ठीक होता नहीं दिखाई पड़ता, मगर इनकी जिद है। और एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते, तो अपने पति से यह कहना भी संभव नहीं कि सिर में दर्द है या बुखार है। ये भी चोरी छिपे छिपाना पड़ता है, नहीं तो होम्योपैथी शुरू। मरीज से मतलब नहीं है, सिद्धांत कुछ हैं जो नेचुरोपैथी के दीवाने, उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरे एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी मर गई नेचुरोपैथी में, पूरे समय में मौजूद था जब ये घटना घटी। उनको कई बार समझाया कि तुम इस पत्नी को मारे डाल रहे हो, उपवास, वो कमजोर बीमार, उसको वो उपवास करवा रहे। सो मैंने कहा उपवास कभी ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसकी हालत खराब है। पर वो बोले कि हालत इसीलिए खराब है कि शरीर में विषाक्त द्रव्य हो गए, टॉक्सिक, उनको निकालना पड़ेगा, उपवास से ही निकल सकते हैं। और एलोपैथी की दवा तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि उसमें तो और जहर है। सिद्धांत मजबूत, पत्नी सूखती गई। इधर मैं उनसे कहता भी कि पत्नी सूखती जा रही है, हालत उसकी खराब होती जा रही है, पर वो कहते कि जरा देखो तो उसके चेहरे पे कैसी कांति, वो पीली पड़ रही, वो उसको कांति कहते। ऐसा ही तो साधु सन्यासियों के पास लोग जुड़े रहते, उनका चेहरा पीला पड़ता जाता है, और भक्त कहते हैं कैसा स्वर्ण जैसा तपश्चर्या प्रकट हो रही। दूसरा देखेगा तो उनको बीमार पाएगा, इलाज की जरूरत है। भक्त देखता तो वो कहता कैसा शुद्ध कुंदन जैसा चेहरा निकला आ रहा है, स्वर्ण प्रकट हो रहा है। नजरों में सिद्धांत छाए हो तो पीतल सोना मालूम होता है। मैंने उनसे कहा ये पत्नी मर जाएगी, न केवल उसका शरीर कमजोर हुआ, उसकी नींद भी खो गई, क्योंकि भोजन की थोड़ी मात्रा नींद के लिए जरूरी है। जब शरीर में कुछ पचाने को ना हो तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं रह जाती। जब नींद खो गई, मैंने उनसे कहा इसकी नींद खो गई, वो कहने लगे कि ये तो हो जाता है जब आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा तो गीता में ही कहा है कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयम। ये पत्नी संयम को उपलब्ध हो रही, उनको समझाना मुश्किल था। फिर पत्नी पागल भी हुई, मगर वो अपनी बकवास जारी रखे। पत्नी मर भी गई, लेकिन सवाल सिद्धांत का था। ध्यान रखना, ऐसा ही धर्मों के जगत में चलता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा मिलने को तैयार हूं, तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। कहते हैं तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए वृंदावन, तो उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे। कृष्ण की मूर्ति थी बांसुरी लिए, अब तुलसीदास झुक सकते कहीं कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी लिए? वो तो धनुर्धारी राम के भक्त थे। जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे झुकूंगा नहीं, ये बात कैसी हुई? परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं है,
तुम परमात्मा को भी अपने अनुशासन में रखना चाहते हो। तुम्हारे ढंग से आए तो झुकोगे, इसका अर्थ हुआ तुम अपने ढंग के लिए झुकोगे, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। तुम परमात्मा से कवायद करवाने को उत्सुक हो। ये कैसा अहंकार? नहीं, बुद्धि विवादी है, झगड़ेल है। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले छोड़ो, भी गीता से क्या लेना देना है। आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन? गीता से नहीं मिले जाने दो, धम्म पद से ही चलो, धम्म पद से खोज ले। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बंधने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बंध गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा। सभी रास्तों से लोग पहुंचे। मैं तुमसे सभी रास्तों की चर्चा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम सभी रास्तों पर चलो, मैं कहता हूं जब तुम्हें जो रास्ता जम जाए तुम उस पर चल पड़ना। जिनके लिए तब तक न जमा होगा उनके लिए मैं आगे बोलता चला जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरे वक्तव्यों में विरोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने विरोधी लोगों पर बोल रहा हूं, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी भिन्न हैं। कहां बुद्ध, कहां क्राइस्ट, कहां कृष्ण, कहां महावीर, कहां पतंजलि, कहां तिलोपा, कहां शिव का विज्ञान भैरव, कहां लाओसु का ताओ ते किंग। इतने भिन्न लोग हैं, इतनी भिन्न सदियां, इतनी भिन्न अभिव्यक्तियां। लेकिन मेरी सारी चेष्टा तुम्हें बताने की यह है कि सबके भीतर एक की तरफ ही इशारे हैं, अंगुलियां अलग अलग, चांद एक है। तो जब मैं लाओसु की उंगली पकड़ के उठाऊंगा चांद की तरफ, तो स्वभावतः वो उंगली वैसी ही नहीं होगी जैसी बुद्ध की उंगली होगी। हो ही नहीं सकती। बुद्ध की उंगली बुद्ध की उंगली है, लाओसु की उंगली लाओसु की उंगली है। तुम अगर गौर से मुझे देखते रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि उंगलियों का प्रयोजन ही नहीं है। उंगलियां किस तरफ उठाई जा रही हैं? चांद की तरफ। उस तरफ देखो, उंगलियों को भूलो। अगर तुमने चांद देखा तो मेरे वक्तव्यों में तुम्हें एक धारा बहती हुई प्रवाहित मालूम होगी। अगर उंगलियां देखी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मेरे वक्तव्य तुम्हें अलग अलग मालूम होंगे। चांद को देखना हो तो तुम्हें मुझे बड़ी प्रेम की नजर से देखना होगा। विवाद की नजर लेके तुम आए तो शब्द दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विवाद शब्द को भी पकड़ ले तो बहुत, शब्द भी छूट जाता है। विवादी का मन इतना आतुर होता है विवाद के लिए कि वो शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता। उनको पकड़ लेता है जिनको विवाद के काम ला सकता है, उनको छोड़ देता है जो उसके काम के नहीं। जिनसे विवाद खड़ा हो सकता है उनको पकड़ लेता है, जिनसे खड़ा नहीं हो सकता उनको भूल ही जाता है। लेकिन अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना, जो कि जीवन को देखने का अलग ही अनूठा ही ढंग है, अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना तो तुम मेरे सारे विरोधों में एक ही संगीत को प्रवाहित होते हुए देखोगे। नदियां चाहे पूरब की तरफ जा रही हों चाहे पश्चिम की तरफ, सब सागर की तरफ जा रहे हैं। कुछ नजर आता नहीं उसके तस्वर के सिवा, हसरते दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। प्रेम के लिए जो आंख है, बुद्धि के लिए वही अंधापन मालूम होता है। इसलिए बुद्धिमान सदा प्रेम को अंधा कहते रहे। तुम प्रेमी से पूछो, प्रेमी बुद्धिमानों को अंधा मानता है, क्योंकि प्रेमी कुछ ऐसा देख लेता है जो बुद्धि देख ही नहीं पाती। कल एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब से ध्यान कर रहा हूं तब से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव आती हैं कि मुझे डर लगता है
कि कहीं मैंने कल्पना तो नहीं कर ली, फूल ज्यादा रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, वृक्ष ज्यादा हरे मालूम पड़ते हैं, ताजे और नहाए मालूम पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तो ये वही है, न इन्होंने कोई स्नान किया है न कोई ताजगी आ गई। उस युवक की चिंता स्वाभाविक है, भीतर मन साफ हो रहा है तो बाहर भी चीजें साफ होने लगी। मैंने कहा घबराना मत, अगर डर गए और ऐसा सोच लिया और मान ली बुद्धि की बात की ये तो कल्पना का जाल है, तुमने सपने देखने शुरू कर दिए, तो जो द्वार खुलता था, जो पर्दा हटता था, रुक जाएगा। ये तो बुद्धि ने सदा ही कहा है, एक कवि को फूल में उतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता, एक छोटे बच्चे को सागर के तट पर कंकड़ पत्थर में सीपी शंख में इतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कंकड़ पत्थर भर लेता है खीसे में जो भी रंगीन मिला, माँ बाप कहे चले जाते हैं कि फेंको बोझ हुआ जा रहा है, ये घर ले जाके क्या करोगे, बच्चा छोड़ता भी है तो भी आंख में आंसू आ जाते। ये जो बड़े बूढ़े हैं इनको अगर हीरे जवाहरात होते तो ये भी भर लेते, अभी इनको ये पता ही नहीं रहा, ये भूल ही गए भाषा कि इस बच्चे को अभी कंकड़ पत्थरों में भी हीरे दिखाई पड़ते हैं, अभी हर रंगीन पत्थर कोहिनूर है, अभी इसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, अभी साफ है, अभी इसे सीपी शंख में खजाने दिखाई पड़ते, अभी इसकी बुद्धि मंद नहीं हुई, अभी प्रतिभा ताजी ताजी है, अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, अभी नजर साफ है, अभी धूल नहीं जमी, अभी अनुभव का कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही बड़े बूढ़े इसे समझा देंगे कि कंकड़ पत्थर हैं छोड़ो, और दूसरे कंकड़ पत्थरों की दौड़ पर लगा देंगे जिनमें उनको मूल्य दिखाई पड़ता है। जब तुम फिर से प्रेम में पड़ते हो तो फिर तुम्हें बच्चे की आंख मिलती, जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें कवि की आंख उपलब्ध होती, तुम्हें रहस्यवादी संत की आंख उपलब्ध होती। तो अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो ही मेरे पास भी हो, ध्यान रखना, अन्यथा पास आके भी कोई पास आ पाता है, शारीरिक निकटता किसी को पास थोड़ी लाती, एक आत्मिक निकटता, फिर तुम हजारों मील दूर भी रहो तो भी पास हो, विचार बीच में ना हो तो तुम पास हो, विचार बीच में हो तो तुम पास हो के भी दूर हो, और विचार बीच में ना हो तो प्रेम बहता है, विचार पत्थर की तरह रोके हुए है प्रेम को, जहां प्रेम बहता है वहां तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो प्रेम से खाली आंखों को दिखाई नहीं पड़ेंगी, और प्रेम से खाली आंखें तुम्हें अंधा कहेंगी, तुम उससे बेचैन मत होना। उनके लिए ये वक्तव्य स्वाभाविक है, बुद्धिमान तुम्हें पागल कहेंगे, सदा से उन्होंने कहा है। जब बुद्ध के पास लोग आके हजारों की संख्या में संन्यास्त होने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए, इस आदमी ने लोगों को पागल किया, ये क्या है, सम्मोहित हो गए। जब महावीर के पास लोग आके संन्यास्त हुए और उन्होंने जीवन का नया ढंग लिया, नई चाल सीखी, तो लोगों ने फिर कहा कि पागल हुए। ये संसार सदा से ही, जो भीड़ का रास्ता है उससे अन्यथा जाने वालों को पागल कहता रहा है। अगर तुम में हिम्मत हो मेरे साथ चलने की तो तुम्हें यह भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि लोग जब पागल कहें तो हंस लेना, और जब लोग पागल कहें तो क्रोध मत करना, स्वाभाविक है। वे तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक हो तो फिर हम पागल हैं क्या, वो सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं, तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हुए तो तुम उनके विचार को मजबूत कर दोगे कि निश्चित ही तुम पागल हो गए, तुम नाराज मत होना, तुम हंसना, तुम उन्हें विभूचन में डाल देना, तुम मुस्कुराना, तुम कहना कि ठीक कहते हो, पागल हो गए हैं लेकिन पहले से भले हो गए हैं।
और पहले से ज्यादा मजे में हो गए हैं। मगर पागल हो गए हैं ये सच। तुम्हारे पागलपन को उनके प्रति करुणा बनने देना, क्योंकि वे परेशान हैं अपने पागलपन से। वे भी चाहते हैं कि छूट निकलें, कहीं कोई द्वार दरवाजा मिले। वे कारागृह में बंद हैं। अगर तुम्हें आनंदित देखा, शांत देखा, तो तुम उन्हें भी खींच लाओगे। अगर तुम क्रोधित हुए, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने लगे, तुमने कहा कि मैं पागल नहीं, अगर तुम विवाद में पड़े तो तुम उनके लिए द्वार बंद कर दोगे। यही तो वे चाहते थे कि तुम विवाद में उतर आओ। तुम मुस्कुराना, तुम उन्हें आशीर्वाद दे देना, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, एक फूल उनको भेंट कराना और लौट आना। तुम कोई विवाद मत करना, तो तुम उनके लिए भी रास्ता खुला रखोगे। आज नहीं कल वे भी आ सकते हैं। उनकी भी संभावना उतनी ही महान है जितनी तुम्हारी। समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में, हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा, तो ही बने रहने में कुछ सार है। अगर मैं तुम्हें तर्कयुक्त लगूं, तुम्हारे बंधे बंधाए तर्क की सीमा में बंधा हुआ लगूं, फिर तुम मुझसे राजी हो जाओ, तो वो दोस्ती कुछ बहुत गहरी नहीं, वो केवल विचार का नाता है। वो नाता कभी भी टूट सकता है। मेरे विचार बदल जाएं या तुम्हारे बदल जाएं, वो टूट जाएगा। और विचार तो रोज बदलते रहते हैं। विचार का कोई भरोसा? विचार पे भरोसा तो ऐसे है जैसे कुछ न किसी ने सागर की लहरों पर भवन बनाने की आकांक्षा की। विचार तो बड़े चंचल है। मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का। अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। मन तो मौसम सा चंचल है। मन के सहारे अगर तुम मेरे साथ रहे, तो ज्यादा देर चलना ना होगा। ये दोस्ती थोड़ी देर की रहेगी। रास्ते पर दो राहगीर मिल गए, फिर मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। मिले थोड़ी दूर को, साथ चल लिए, फिर बिछुड़ गए। प्रेम ऐसी कुछ बुनियाद है कि शाश्वत हो सकता है, मृत्यु भी उसे मिटाती नहीं। जीवन तो उसे डगमगा ही नहीं सकता, मौत भी उसे नहीं डगमगा पाती। बुद्ध की मृत्यु करीब आई, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज वे विदा हो जाएंगे शरीर से। आनंद बहुत रोने चीखने लगा, लेकिन वो चकित हुआ कि बुद्ध का एक जो दूसरा शिष्य सुभूति एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा है। आनंद ने उससे कहा, तुम्हें खबर नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं, भगवान आज देह छोड़ देंगे। तुम रो नहीं रहे, तुम होश में हो, तुम्हारी आंखें गीली नहीं। फिर कभी मिलन ना होगा, फिर कभी उनके ये सद्वचन सुनने को ना मिलेंगे। फिर कौन सिखाएगा ये सद्धर्म? सांस तक खोया जाता है। सुभूति ने कहा, जिस शास्ता से मेरा संबंध है उसके खोने का कोई उपाय नहीं, जिससे मेरा संबंध है उसकी मौत नहीं हो सकती। वो फिक्र मैंने पहले ही कर ली है आनंद, तूने कुछ गलत से संबंध बना लिया। विचार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा संबंध गहरा है विचार से। हम साथ ही हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते, अलग होने का कोई उपाय नहीं। आनंद ने बुद्ध को आके कहा,
बुद्ध ने कहा सुभूति ठीक कहता है आनंद।

0: आनंद ने कहा मैं 40 वर्ष आपके पास रहा और मैं आपके पास ना हो पाया, क्या बाधा है? तो बुद्ध ने कहा तू ज्यादा सोच विचार करता, तेरा मुझसे संबंध विचार का है, तू अभी भी ध्यान में मुझसे ना जुड़ा। ये ध्यान बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए, कहो ध्यान कहो प्रेम।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था व्हाई डू कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं। आशा करता हूँ इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।
4: राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। आज मेरी बातों में आपको कहीं ना कहीं एक खुशी नजर आ रही होगी, एक एनर्जी नजर आ रही होगी। उसके पीछे एक वजह है, खास वजह यह है कि बहुत ही खूबसूरत रेसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं।

0: ऐसा मूवमेंट कम होता है, और यही एक वजह है कि मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छी टैलेंटेड रेसलर है हमारे बीच में, हमारे साथ है आरती त्रिवेदी। तो आरती त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक बेल्ट रह चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट, और साथ ही साथ लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, और 2021 में आप फर्स्ट रनर अप रही हैं। सो आपका एक बार पूरा बहुत बहुत स्वागत। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक बेल्ट के साथ इतनी सारी खूबियां होती हैं। सो आरती, कैसा फील कर रही है आज स्टूडियो में आकर, कैंपस में आकर?
1: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड।
0: ओह रियली नाइस, रियली नाइस। मुझे भी आपसे बात करके थोड़ी सी खुशी हो रही है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था जब मैंने सुना कि कोई ब्लैक बेल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने आपके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि हाँ, आप अच्छी बातचीत हो सकती है आपके बारे में। तो ये जो आज आपका यहाँ आना हुआ है कैंपस में, जिस शूट के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इससे कैसे जुड़ना हुआ, इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के साथ आप लोग चल रहे हैं?
1: एक्चुअली ये फाउंडेशन ग्रुप है, लॉ ग्लोबल फाउंडेशन, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और जो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं तो हम उन गर्ल्स को, लेडीज को अवेयर कर सकें, और जो मेंस लो मिडिल क्लास है उनको सपोर्ट कर सकें।
0: जी जी जी, वाकई बहुत अच्छे, एक यूं कहें कि सोसाइटी के काम से आप जुड़ी हुई हैं, और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, खासकर महिलाओं को, तो आप आगे आएं, उस परेशानी को आप ना छुपाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बीमारी का वक्त रहते हुए इलाज हो पाएगा। अब आपके बारे में बात करते हैं कि कब लगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आना है, फाइट करनी है, रेसलर बनना है, ब्लैक बेल्ट हासिल करनी है, कब लगा आपको?
1: नहीं सर, एक्चुअली क्या होता ना, जब हम छोटे होते हैं तो हर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये करना है, बट मुझे ऐसा लगता था स्पोर्ट्स हो बट इंडिविजुअल हो, कि हाँ खेला है तो सिर्फ आरती ने खेला है, जीती है तो सिर्फ आरती जीती है, तो जस्ट चूज ऑफ कि मैं कराटे खेलूंगी।
0: ओह ग्रेट ग्रेट। कराटे के बारे में जब जिक्र हो ही गया है, तो आपने मुझे बताया था कि स्कूल लेवल पर आप जा चुकी हैं, नेशनल भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो माहौल रहा वो कैसा माहौल रहा, कितनी खुशी मिली उस वक्त आपको, कैसा लगा?
1: बहुत खुशी मिलती थी, जब हम लोग जीत कर आते थे तो हमसे ज्यादा हमारे फादर्स को लगता था वाओ, मेरी बेटी का फ्रंट पेज पे फोटो है, नाम है, तो जस्ट वो खुशी बहुत अनबिलीवेबल होती है,
0: बयान नहीं किया जा सकता।
1: एग्जैक्टली, और जब आपकी फाइट को देख के बॉयज बोले ऐसे खेलना चाहिए।
0: एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती, यहाँ पर अगर आप कहें तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, और जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जब आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये गाना सुनना चाहती हूँ, लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ।
1: पल पल दिल के पास,
0: पल पल दिल के पास, मेरे भी पल पल दिल के पास आरती बैठी हुई है फिलहाल। ये ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 एफएम। मेरे साथ बैठी हुई है ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट रनर अप रही हैं 2021 में आरती त्रिवेदी। ये ब्यूटीफुल गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरी यानी गगन के साथ, और मेरे साथ आज खास मेहमान है ब्लैक बेल्ट जिनको मिल चुकी है ब्यूटी पेजेंट, लोग ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी, वेलकम बैक।
1: थैंक यू सर।
0: कैसा लगा गाना आपको ये?
1: बहुत अच्छा।
0: देखिए, जब खूबसूरत गाने हम सुनते हैं और पुराने दौर में हम चले जाते हैं, गानों के एक मायने हैं, वर्ड्स के एक मीनिंग है, और खासकर जब उस पे म्यूजिक अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन दूर हो जाती है। आरती, जब म्यूजिक का जिक्र हो ही चुका है, तो जब आपको लगता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ या परेशान हूँ, तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में कितना दखल करता है?
1: 99%।
0: तो सही सवाल किया मैंने आपसे।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपका मूड बता देता है कि आपका मूड अच्छा है, मिडिल है, या बिल्कुल खराब है।
0: तो इसलिए म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में।
1: हाँ जी।
0: आप मुझे ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट आपको मिला जब आप इस फील्ड में आ रही थी, चाहे वो ब्लैक बेल्ट की बात हो या ब्यूटी के क्षेत्र में आने की बात हो?
1: एक्चुअली छोटे थे, मदर नहीं को ऐसा लगता था कराते खेलेगी लग जाएगी, बट फादर नहीं कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी।
1: उसके बाद में मदर भी बहुत एग्री हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं गई, मदर ब्रदर
0: सभी ने सपोर्ट किया,
1: सपोर्ट रहा,
0: कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से किसी ने रोका नहीं आपको, हमेशा ही पुशअप किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो?
1: हाँ सर, एक्चुअली फैमिली से सपोर्ट हुआ बट ससुराल से नहीं हुआ।
0: ओके,
1: ऑब्वियस सी बात है। और इतने क्रैशेस बढ़ गए कि डाइवोर्स हो गया।
0: ओ माय गॉड, सॉरी, मैं आपकी बातों को छेड़ दिया।
1: नहीं,
0: मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि जो आपका ख्वाब है वो ख्वाब आपका हकीकत में तब्दील हो, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ख्वाबों को संजो के रखे हैं, पाल कर रखे हैं, अदरवाइज तो इंसान कहीं ना कहीं चार दीवारी में घुटकर वहीं दम तोड़ देता है।
1: एग्जैक्टली, हम तभी कुछ करने निकलते हैं जब हमको लगता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं।
0: जी जी।
1: और जिन लोगों का माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे लोगों को तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो आज के रिकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं।
0: सॉरी, मैंने आपके घर की बात छेड़ दिया, यूं कहें कि बातों में वो बात आ ही गई। अच्छा, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, मुझे ये बताइए कि घर वालों को या दीदी को या भाई को लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया तो हम आरती को आगे कर देंगे, हमारी दीदी रेसलर है, हमारी दीदी भैया ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, कभी कुछ होता है ऐसा?
1: नहीं, एक्चुअली बचपन में हुआ था, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया। आया, दीदी मुझे मार दिया, मैंने कहा अभी बताती हूँ, और उसको बड़ा मार गया।
0: अच्छा, लिटरली? ओह माय गॉड।
1: एग्जैक्टली।
0: देखिए, मैं पहले तो डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव देखा कि हाँ, इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, अदरवाइज लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, और जब मुस्कान नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है कि भैया कुछ बातचीत करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सो फाइनली, क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
1: संदेश ये है कि हम कुछ भी करें, मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, ब्यूटी फील्ड हो, या स्टडी फील्ड हो, जो भी करें हम अपना 100% दें, तो 100% रिजल्ट्स हमको डेफिनेटली मिलेगा।
0: वाओ, ग्रेट। ये लिसनर्स सीखने समझने वाली बात है कि अगर आप जिस फील्ड में हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। सो लिसनर्स, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आप थी आरती त्रिवेदी, ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। आपने हमें जो समय दिया, हमसे जो बात की, उस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी मिलके आपसे बहुत
0: सेम हियर, आई हाय, मजा आ गया। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वो गाने की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ कि इससे जो लौ जलाई जाती है वो लौ जिंदगी भर जलती रहती है, वो लौ कभी बुझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक शिक्षक आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं, ममता बांकुरे जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। और कहा जाता है कि अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो जिंदगी आपकी संवर जाती है, क्योंकि मेरी माँ खुद शिक्षिका रही है तो उन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है। साथ ही साथ आप ला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इसके आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ममता जी, सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जो बात मैंने रखी है शुरुआत में, शिक्षक का जो एक रोल है, जो उसकी भूमिका है स्टूडेंट्स को सजाने की, संवारने की, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बट शिक्षक अकेला एक बच्चे को नहीं संवार सकता। एक बच्चा जब हम संवारते हैं तो वो एक ट्रायंगल ट्री बन जाता है। ट्रायंगल, उसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। एक सबसे पहला उसके घर होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है।
0: वेरी गुड।
1: दूसरा उसका स्कूल, एंड तीसरा जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। उसमें स्टूडेंट बीच में होते हैं और उसमें सबको बैलेंस बना के चले तो एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट समाज को, एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है।
0: जी जी, आपने बात वो कह दी कि जो अक्सर हमने सुना है, सुनते आ रहे हैं कि घर प्राथमिक पाठशाला होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर से सीखता समझता है वो भी एक अपना रोल अदा करता है। आजकल का जो हम समय देखते हैं ममता जी, कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों का सम्मान हम पहले देखा करते थे, अध्यापक का बच्चे के प्रति, बच्चे का अध्यापक के प्रति, वो जो सम्मान है कहीं ना कहीं आपको लगा है कि घटा है या कम हुआ?
1: हाँ, वो कहीं ना कहीं तो उस पे फर्क पड़ा है, बट जो बच्चे का और टीचर का, गुरु के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चे और टीचर, गुरु पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे जो हैं, एक्चुअली बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनको अपना बारे में खुद इतना नहीं पता होता जितना वो उनके गुरु पे रिलाई करते हैं। वो एक बार को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने गुरु पे रिलाई करते हैं। गुरु का मतलब उनको महत्व उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होता है, बट वो जो रिलेशन है वो आज भी काफी हद तक काफी वो है। बट जो थिंग है, जो समाज का, जो सामाजिक बदलते परिवेश है, मतलब जो प्रेशर है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं असर पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप मानती कि है जो एक वेस्टर्न कल्चर है, हिंदुस्तान की सभ्यता तो ऐसी रही नहीं है, और जब वहां से जो

0: कल्चर आता है आज का समय तो ये कि वो घुसता चला जाता है और हम उसके आदि होते चले जाते हैं। तो इस संबंध में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर कितना हावी हो रही है?
1: पश्चिमी सभ्यता का जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है और उसका जो कारण है हम स्वयं ही है। एक्चुअली हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। वो जो टेक्निक्स का जो टेक्निकल नॉलेज है, बट उस चीज में हम भूल जाते हैं उसको संस्कार।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात पर आने वाला था ममता जी, क्योंकि आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि हम अदब, संस्कार और सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक चरण स्पर्श हुआ करता था, आज के समय में घुटना स्पर्श रह गया है, कोई झुकना तक नहीं जाता और कोई किसी का अदब भी नहीं करता। यूं कहें कि शिक्षक और शिष्य की जो बात है वो तो आप छोड़िए, घर में भी अदब नहीं रहा। तो ये जो चीजें अगर आ रही हैं और इस तरीके से हम जो दूसरी चीजें उसमें अगर यूं कहें कि संलिप्त तो होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति, अपना जो अस्तित्व है उसका कहीं लुप्त ना हो जाए।
1: है, अगर हम देखें तो एक तरीके से विलुप्ति होता जा रहा है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का। कहीं सिर्फ एक दिखावा सा रह गया कि अगर हम सोचो देखें तो मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं बट दिमाग कहीं और है। मतलब दिस एंड दैट, मोबाइल एक ऐसा हो गया कि वो मोबाइल ने हम सबको इतना मोबाइल बना दिया कि वी कीप ऑन मूविंग।
0: यस
1: सो दैट इज द थिंग, नीड स्टेबिलिटी समवेयर।
0: हां आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, वो मम्मी को आवाज नहीं दे रहा, सिर्फ वो टेक्स्ट कर रहा है, शायद उसको पता है कि मम्मी भी ऑनलाइन ही होंगे।
1: या इट हैपेंस।
0: क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ऑफलाइन क्लासेस, इसके संबंध में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जिसका ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है थोड़ा सा, मतलब कि इट्स लाइक दैट कि वी लैक कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षिका का जो स्तर है वो डिवाइडेड है। मतलब उसमें हम एक साथ नहीं, जो शहर में, मतलब जो शहर है वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, जो गाँव है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एंड सी हमारा जो भारत है उसकी जो
0: गांव में बसते हैं
1: right. वहाँ पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर। सबसे पहले वो जागरूकता, क्योंकि अभी तक शिक्षा इतना, आप आज की डेट में शिक्षा इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो चुका है कि आप देखिएगा उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, लेकिन अगर अभी किसी से पूछो तो हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दे आर स्टिल ऑन दैट। सो दैट इज समथिंग, इट हैज टू बी अवेयर, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द विलेजेस एंड दैट, एंड आई थिंक दैट हैज बीन
0: आपसे बात करके ममता जी अच्छा लग रहा है। और वाकई जो बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को जानेंगे, समझेंगे, अमल में भी लेकर आएंगे। संस्कार और जो गुरु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को, तो वो संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: मैं तो यूथ को और उनके पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ, और वो संदेश ये है कि जो आपका बच्चा चाहता है, आप बच्चे को समझिए और उसको वो करने दीजिएगा जिस फील्ड में, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है अपने बारे में, तो उसको पता है कि वो कहाँ अपना अच्छा दे सकता है। हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेटा तू इंजीनियर बन या तू डॉक्टर बन, बिकॉज बहुत सारी चीजें देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के सपने ना, मतलब वो सपने ही बन के रह जाते हैं बिकॉज उनके माँ बाप कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं, दैट इज की फॉर देम द फैशन। अब देखिएगा हरनाथ सिंह ने कितना मतलब भारत का नाम किया है, बट शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल प्लेस।
0: Exactly.
1: But still there are this is the society is like that na, ki in small cities and all the parents don't allow ki nahi abhi nahi, this is not for you, you go for that, so that should be stopped.
0: ओके सो लिसनर्स, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो बात का सार यही है कि जो आपके सपने हैं वो आपके अपने हैं। कहने का मतलब यही है कि सपना देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को खुलकर आगे आने दें, उनका जो क्षेत्र है वो जो करना चाहते हैं उनको करने में आप मदद करें, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। सो ममता जी आपसे बात करके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी शिक्षिका हैं, आप अच्छा काम करते रहें और आप देश के भविष्य को आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: रे मनोज, कायम लटकाए बैठा हो, का बात होगी?
1: अब कहो बताओ भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसो कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
0: तो का हुआ, मिलो ना? तो
1: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
0: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी को नाम कुछ और गेर दियो
1: ना? वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
0: तो का बात है
1: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
0: ए तो या में इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
1: तो अभी वो ठीक ना होवे?
0: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरो टीको लगवा लिया हो पर वो प्रमाण पत्र में ना लिखो गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट को विवरण ना लिखो गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कोई दूसरे नंबर को उपयोग करो गए हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यू बस एक ही बार ठीक हो गया।
1: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकू करनी क्या होगी?
0: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वाके बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहां मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा दी। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
1: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
0: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सके। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:14 हो चुके 29 तारीख है यानी कि सोमवार का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऑन रोड जब आप चलते हैं तो यातायात के नियम कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अगर आपकी लेन बाइक की है तो बाइक वाली लेन में ही आप अपनी बाइक चलाएं, अगर आपकी लेन कार की है तो कार वाली लेन में ही कार चलाएं, अगर आपकी लेन बस वाली है, ट्रक वाली है तो उसी लेन को ही फॉलो करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग इधर उधर जब भागते हैं तो दिक्कतें परेशानियां वहीं से शुरू हो जाती हैं और दुर्घटना घट जाती है। सुबह सुबह महामाया फ्लाईओवर से जब हम आ रहे थे ग्रेटर नोएडा की तरफ तो हमने देखा कि कुछ रोड एक्सीडेंट्स हुए लेकिन वहां पर लोगों की भीड़ थी। थैंक गॉड, मुझे लगता है कि उस भीड़ को देखकर यही लग रहा था कि कोई जनधन हानि नहीं हुई, लेकिन जब घटनाएं बड़ी हो जाती हैं तो बहुत दुख होता है। सो प्लीज सुरक्षित चलिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल हम सब इंतजार कर रहे हैं मौसम के बदलने का, बारिश का, अल्लाह मेघ दे पानी दे, क्योंकि सच बात तो यह कि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा हम लोग महसूस कर रहे हैं और जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, मौसम की अपडेट क्या है वो बातें जरूर जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: चन चन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: करने जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं, उन 5 फूड के विषय में।

जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशा 90.8 FM।

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो शादा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां, जब हमारी सेहत ठीक होती है तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। मान लीजिए अगर आप बीमार हैं तो आप जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और उन कामों की वजह से जो आपसे लोग जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, तो उनका काम भी प्रभावित होता है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। घर में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं, कई बार उनका काम मारा जाता है, तो कितनी हानि होती है। तो इसी तरह से बहुत सारी काम हमसे जुड़े हुए होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो उनका असर हम पर तो होता ही होता है, हमसे जुड़े अन्य लोगों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसको सही कराने में पैसा लगता है और हम काम पर भी नहीं जा पाते तो वो भी हमारी हानि होती है, और जो हमारा पैसा बचा हुआ रखा है वो कहीं ना कहीं बीमारी को ठीक करने में लग जाता है और हमारे जो घर के अन्य काम हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तभी कहा है कि आपकी अगर सेहत अच्छी होती है तो आपको लाभ ही लाभ है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक बात पहुंचाते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, अपना टीकाकरण करवाएं। और आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में खासकर हम बात करेंगे टीकाकरण की, क्योंकि टीकाकरण के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि टीका क्यों लगवाएं, इससे बुखार आ जाता है, दर्द होता है, और जब हम ठीक हैं तो टीका लगवाने की क्या आवश्यकता है, और भी बहुत तरह की बातें टीकाकरण के बारे में प्रचलन में हैं। तो इन्हीं सब भ्रम को तोड़ने के लिए और आप तक सही जानकारी पहुंचे कि टीकाकरण कितना ज़रूरी है हमें आने वाली गंभीर समस्याओं से, बीमारियों से बचाने के लिए, अपने नन्हे मुन्नों को बचाने के लिए, तो किस तरह से टीकाकरण काम करता है और हमें कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टीकाकरण से जुड़ी हुई हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन बातों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संजय गांधी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, और इनसे जानकारी ले रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च या सीफार की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
1: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
2: जी,
1: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं, जानते हैं बच्चे की जान बचेगी फिर भी हिचकिचाते क्यों?
2: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे, बच्चे को अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
1: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
2: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती है। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
1: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
2: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
1: हाँ,
2: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
1: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में? और दूसरी चीज, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
2: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
1: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है, कुपोषित है, लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है, और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
2: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
2: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
1: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
2: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना तो वहां थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
2: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन्स, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं। और एक बच्चे का, अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है। तो एक बच्चे की अगर मौत होती है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि

0: कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
1: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना, ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
0: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा।
1: बहुत बड़ा अंतर है ना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
0: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और ANM की भी होती है क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हो।
1: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है, वेरी नाइस, लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय कि वो रीअश्योर कर देगी और हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवीं बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फला को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था, देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग, जो भी हमारे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब

0: उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है? क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
1: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
0: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है हमारे, बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए? या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
1: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर, जब माएं राशन लेने जाती है ना वहाँ पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फलां दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाति इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फला के बच्चे को लगवाया था देखो और फला ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझें हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है? किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको, किससे ना, बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रिएश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ही हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
0: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीजों पे, तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम, हम फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाए। तो 3 चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है, इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है, हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है, जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना, उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर, वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो आपको कल ऑफिस जाना है, तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना, तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
0: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए, अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
1: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आए माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के माध्यम से आपने जाना कि टीकाकरण हमारे जीवन को बचाने के लिए कितना जरूरी है। हमें अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए, हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, आशा दीदी हैं, ANM बहन जी हैं, उनकी बात माननी चाहिए, और अपने बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण गंभीर बीमारियों से हमको बचाता है। अगर हम टीकाकरण समय से नहीं करवाते तो हमें कहीं ना कहीं एक दिन पछताना पड़ता है कि काश हमने डॉक्टर साहब की बात मान ली होती, काश जो रेडियो पर कार्यक्रम आया उसमें जो बताई गई बातें हमने मान ली होती, तो शायद ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। तो हम आपसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों का जरूर टीकाकरण करवाएं समय पर। फिलहाल समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शादा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के समय में हमारे बहुत से किसान भाई प्रगतिशील किसान बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रगतिशील किसान कौन होते हैं, उनमें और हम में क्या फर्क होता है। तो किसान मित्रों, आपको बता दें कि प्रगतिशील किसान वो होता है जो पारंपरिक खेती के तरीकों से हटकर आधुनिक, वैज्ञानिक और नवीन तकनीकों जैसे AI, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग को अपनाकर उपज और आय को बढ़ाता है, जिससे खेती में कम लागत में अधिक उत्पादन मिलता है और बेहतर मुनाफा होता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण को भी बचाता है। ऐसे किसान भाई नई फसलें जैसे मशरूम, ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं और मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आता है और वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। प्रगतिशील किसान भाई ड्रोन सेंसर इस्तेमाल करते हैं और साथ ही वो रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद, केंचुआ खाद और नीम तेल जैसे प्राकृतिक तरीकों का खेती में प्रयोग करते हैं। प्रगतिशील किसान भाई अनाज के साथ साथ फल, सब्जियां और मशरूम जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाते हैं और वो अपनी खेती में ड्रिप सिंचाई और फसल चक्र जैसी विधियों से उपज बढ़ाते हैं। प्रगतिशील किसान भाई पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा पैदावार प्राप्त करते हैं और ऐसे प्रगतिशील किसान खेती की लागत घटाकर और पैदावार बढ़ाकर सालाना लाखों रुपए कमाते हैं। तो किसान बहन भाइयों, आप समझ गए होंगे कि प्रगतिशील किसान भाई वो होता है जो खेती में लागत को कम करता है और उससे फायदा ज्यादा लेता है आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके। तो किसान बहन भाइयों, आपको भी अपनी खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके खेती में जो लागत है उसको कम करें और उससे फायदा ज्यादा लें। और सरकार भी अनेक योजना चला रही है, उनका लाभ भी आप लीजिएगा। इसके लिए आप अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां जाके संपर्क कर सकते हैं और आधुनिक कृषि के बारे में, तकनीकों के बारे में, यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनका उपयोग अपनी खेती में कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रगतिशील किसान भाइयों की, और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा सत्यवादी हरिश्चंद्र का और कलाकार हैं पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना।
1: किसी

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से ये रागनी। किस्सा था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। किसान मित्रों, खेत से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर साल अगर आप खेत में एक ही फसल करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती चली जाती है, पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। लेकिन जब आप बदल बदल के हर साल फसल करते हैं तो खेत की मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उपजाऊ क्षमता है, वो बनी रहती है और फसल उत्पादन है वो आपको अच्छा मिलता है। लेकिन जब आप एक ही फसल हर साल करते रहते हैं तो खेत की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और फसल उत्पादन भी कम हो जाता है और फिर आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम कृषि विविधीकरण की बात करें तो पारंपरिक फसलों की बजाय विभिन्न प्रकार की उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे फल, सब्जी, औषधीय पौधे या फिर खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों को अपनाना चाहिए। ये किसान भाइयों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और मृदा स्वास्थ्य सुधारने और साल भर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। किसान मित्रों, कृषि विविधीकरण केवल एक फसल पर निर्भरता को कम कर कृषि को अधिक लचीला और लाभदायक बनाने की रणनीति है। फसल विविधीकरण में किसान भाई गेहूं, चावल जैसे एक ही फसल चक्र के बजाय दालें, तिलहन, बागवानी, फल सब्जी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम की खेती अपना सकते हैं। अब किसान मित्रों, आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि आखिर कृषि विविधीकरण की, फसल विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इससे आपकी आय में वृद्धि होती है। कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर जब आप उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों को अपनाते हैं तो आपकी आय में भारी मुनाफा होता है। इसके अलावा यदि एक फसल खराब हो जाती है तो अन्य फसलें या जो अन्य गतिविधि हैं कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साल भर जो रोजगार का चक्र है वो चलता रहता है। खेती से तो आमदनी 3 महीने बाद 6 महीने बाद होती है, लेकिन खेती के साथ साथ आप कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण अपनाते हैं तो पूरी साल आपको रोजगार मिलता रहता है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ आय होती रहती है और साथ ही मृदा और पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। एक ही फसल जैसे धान, गेहूं लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है और साथ ही फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और कीटनाशकों की जरूरत कम हो जाती है। इसके साथ ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों की बजाय कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, मक्का को अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, जल संरक्षण होगा और इसके अलावा बाजार में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के अनुसार फल, सब्जी और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, कृषि विविधीकरण या फसल विविधीकरण न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी आप किसान भाइयों के लिए एक बेहतर विकल्प है। ये पारंपरिक खेती से आधुनिक, टिकाऊ और लाभदायक खेती की ओर एक आवश्यक कदम है। तो किसान मित्रों, आप भी कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण को अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। और अब किसान मित्रों, आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और रविंद्र खालौर। खिस्सा रहेगा रूप बसंत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और रविंद्र खालौर से ये रागनी, किस्सा था रूप बसंत का। किसान मित्रों, बुढ़ापा जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जहां शरीर में शक्ति कम हो जाती है, काम इंसान कर नहीं पाता है, और फिर काम नहीं कर पाता है तो उसकी आमदनी भी कुछ नहीं होती है और खर्चा तो होता ही होता है। अब बुढ़ापे में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आए, इसके लिए सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देना है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी बचत खाता धारक के लिए खुली है जो आयकर दाता नहीं है। इस योजना में पात्र के योगदान के आधार पर 1,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाती है। पात्रता की बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इसके साथ ही उनके पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। किसान मित्रों, इस योजना के अंतर्गत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति पत्नी को समान पेंशन मिलती है और दोनों की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। अब इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर के पंजीकृत अपने आप को करा सकते हैं और इसके लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता नंबर, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, इनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप भी अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही अटल पेंशन योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

ज्ञानेंद्र सरधाना द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

प्रेमी सजनों बन जाते हैं रिश्तेदार, बन जाते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मेहरबानों आज सत्यवान डोरी और कुल्हाड़े की लाला से खुशामद करता है। लाला जी हम पर बुरा वक्त है और हमें डोरी और कुल्हाड़ा गुजर वसर के लिए चाहिए, लेकिन दोस्तों कहने लगा कि चाहे मेरे ये फटे पुराने कपड़े आप गिरमी धर लो, लेकिन मुझे ऐसी मुसीबत में डोरी और कुल्हाड़ा देकर के सहारा दे दो। दोस्तों डोरी और कुल्हाड़ा सत्यवान को मिल गए और सत्यवान लकड़ी काटना शुरू कर देता है बियाबान जंगल में और अपने माँ बाप की खातर उन लकड़ियों को बेचकर दो रोटी का सहारा देता है। मेहरबानों उधर मगध देश के अंदर राजा अश्वपति की इकलौती सुता सावित्री शादी के योग हो जाती है और दोस्तों चिंता हो गई अश्वपति को। नाई ब्राह्मण जगह जगह घूमे लेकिन जोड़ी का वर नहीं मिल पाया और दोस्तों बाद में अश्वपति किस तरह से कहने लगे बेटी

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: रेडियो आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है, ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो चलिए श्रोताओं, आज बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर और जानते हैं कि जब पिता के सुरक्षा देने वाले हाथ ही राक्षस बन जाए तो ऐसी स्थिति में एक बेटी क्या करे। ऐसी मनोस्थिति से गुजरती हुई एक बेटी की कहानी आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम में।

0: राधा, अरे ओ राधा, जल्दी उठ। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे। अभी तक तू रो रही है, क्या है ये सब?
1: माँ मैं रोऊं नहीं तो क्या करूँ, कब तक ये सब चलता रहेगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है।
0: अब फिर से वही सब शुरू मत कर दे, चुप हो जा।
1: पर क्यों माँ, मैं क्यों चुप रहूँ? मेरे साथ जो हर रोज इस घर में हो रहा है, क्या वो तुम्हें दिखाई नहीं देता? हर रोज मेरी आबरू को पैरों तले रोंदा जाता है, और ये सब देखकर भी तुम चुपचाप सहती रहती हो और देखती रहती हो, कुछ नहीं कहती हो। क्यों माँ क्यों?
0: अब बस भी कर राधा, ये तमाशा मत कर, भगवान के लिए चुप हो जा। वैसे भी हम औरतों को ये सब सहना पड़ता है, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है?
1: माँ ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम रोज देखती हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं माँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। पिताजी जो मेरे साथ कर रहे हैं वो मैं सबको बता कर ही रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए।
0: अगर तूने ऐसा किया तो मेरा मरा मुंह देखेगी।
1: माँ मत करो ऐसा माँ।
0: अरे राधा, तुझे मैं तब से फोन कर रही हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठाती?
1: सीमा मैं क्या बताऊँ, प्लीज अभी मुझे जाने दे, मुझे कोई बात नहीं करनी है।
0: राधा कुछ तो बोल, अगर बोलेगी नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि हुआ क्या है?
1: नहीं कुछ नहीं, मुझे जाने दो प्लीज अभी।
0: नहीं तो पहले मुझे बता ना कि क्या हुआ है।
1: कहा ना कोई बात नहीं है, क्यों परेशान कर रही हो मुझे?
0: तुझे मेरी कसम राधा, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो जल्दी बता दे कि रो क्यों रही है, आखिर हुआ क्या है?
1: देख सीमा, मैं ही कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और अब मैं और नहीं सह सकती। रोज रोज के तमाशे से मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे पिताजी हर रोज मेरे कमरे में आ जाते हैं और मुझे गलत तरीके से छूते हैं, मुझसे जबरदस्ती करते हैं, और उनकी वजह से मैं एक बार प्रेग्नेंट में हो चुकी हूँ। उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा अबॉर्शन भी करवाया था। मैं अब ये नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती।
0: राधा ये सब तू क्या कह रही है? एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और अगर ये सब हो रहा है तो तूने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? वो जरूर तेरी मदद करेंगे।
1: क्या खाक मदद करेंगे सीमा, जब माँ ही साथ नहीं दे रही है तो कोई और साथ क्यों देगा?
0: मतलब
1: मेरे घर में ये बात सबको पता है, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। ये सब कहकर चुप करवा देते हैं कि बाहर किसी को पता चला तो घर की बेइज्जती हो जाएगी। अब तू ही बता मैं क्या करूँ।
0: तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, हम पुलिस के पास जाकर मदद लेंगे।
1: पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं सीमा, मेरे घर वालों को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे, पुलिस नहीं।
0: राधा कुछ नहीं होगा, तू चल, मैं हूँ ना, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और अगर तूने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो कभी इस दिलदर से नहीं निकल पाएगी।
1: शायद सीमा तुम ठीक कह रही हो, इस बार मैं कदम पीछे नहीं लूंगी और ना ही अपने साथ हिंसा होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। आगे बढ़ के हमें अभी कदम उठाना होगा। मैं अभी नंबर डायल करती हूँ। हेलो पुलिस थाना,
0: आई एम प्राउड ऑफ यू राधा, मुझे तुम पर गर्व है। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारी दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ है।
1: थैंक यू सो मच सीमा, तुम नहीं होती तो मैं ये कदम कभी नहीं उठा पाती। थैंक यू सो मच।
0: इट्स ओके।

पिता और बेटी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन कभी कभार कुछ घटिया मानसिकता के लोग इस रिश्ते को तार तार कर देते हैं। और जब रिश्ते इस कदर भावनाओं पर आघात करना शुरू कर दें, तो आवश्यकता है कि आवाज उठाएं और कहें हिंसा को नो। उम्मीद है श्रोताओं कि आज की ये कहानी बदलते समाज के बदलते रूप को दर्शाने में सफल हुई। यदि इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी विचार है या कोई भी सवाल है, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7018712909। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या खत्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंद का सेवन कर सकते हैं। शकरगंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना?
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Bingo on Malaysia card, the end. Hmm.
1: Eh?
0: बुखार का दी एंड। ये
2: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह।

0: अक्षरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
0: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं, हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं। और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
0: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठिशुम ठिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
0: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: अभी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: तीन तारा मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
0: बाय बाय।
1: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
2: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
2: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म होगी क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Solo Sharda.

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें।

तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस ऑडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में हम लोग आज क्लास 6 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें शामिल एक कहानी है नादान दोस्त, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और लेखक प्रेमचंद की लिखी हुई है। प्रेमचंद सबसे बड़ा नाम माना जाता है हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में, और कहानी और उपन्यास में तो वो बेजोड़ है ही हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी और कहानियों की संख्या जानकर आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि उन्होंने लगभग 300 के आसपास कहानियां लिखी, और उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि हम बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी बात है कि उनका विषय उस समय ये नहीं था कि वो पाठ्य पुस्तकों में इस्तेमाल होंगी, लेकिन हम कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो कि बच्चों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है, नादान दोस्त। नादान दोस्त, इसमें दो शब्द हैं और दोनों ही आपको एहसास होगा कि नादान जब हम कह रहे हैं तो थोड़ा एक अनजाना भाव, एक नादानी, एक थोड़ा सा ना समझपन है, और दोस्त जब कह रहे हैं तो, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं। इसलिए नादान दोस्त, इस कहानी का जो मूल विषय है कि हम किसी की सहायता करना चाहते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कई बार कि वो कैसे करनी है, तो उसमें वो नादानी हो जाती है और हम भला करने के चक्कर में कुछ उल्टा कर बैठते हैं। खास तौर से अगर वो बच्चों के संदर्भ में बात हो तो बच्चों को एक लगातार कहना चाहिए, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। बच्चे स्वभाव से बहुत प्यारे हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन शायद थोड़ा सा वो उल्टा हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि दो बच्चे हैं, वो चिड़िया ने बच्चे दिए हुए हैं और वो अंडे दिए हुए हैं, वो उनकी रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी कथा उल्टी हो जाती है।

तो मैं चाहूंगा कि हम इस कहानी का आनंद लें और कहानी से जो भी बात आगे बढ़ेगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि कहानी की शुरुआत देखिए कि आप थोड़ी सी देर में ही लगेगा कि कहानी की एक खूबी ये कही जाती है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। ये सब इसमें भी वही भाव है और बच्चों में एक बहुत बड़ा स्वभाव होता है, बहुत बड़ी स्वाभाविक वृत्ति होती है और वो है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या है इसमें, क्या है ये, कैसे होता है। सवाल बहुत करते हैं बच्चे और उन सवालों के द्वारा ही वो कहना चाहिए वो सीखते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि वो सवाल बहुत हैं। कहानी का आरंभ है कि केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। इसमें एक शब्द हमारे लिए थोड़ा सा जानने वाला है यहाँ, और वो है कि बाकी तो हम जानते हैं, चिड़ा है, चिड़ी है, उसको हम जानते हैं। दरअसल क्या है, कार्निस हम जो दीवार घर के बाहर दरवाजे के आसपास या कहीं पे भी एक छज्जा जैसा निकाल दिया जाता है, हम उसको कार्निस बोलते हैं। और उस छज्जे के ऊपर ही चिड़िया ने अंडे दिए थे और ये दोनों बच्चे जो कि भाई बहन हैं वो उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको देखने में बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। उन दोनों के दिल में बहुत सारे सवाल उठते और सवाल कितने थे देखिएगा उसकी एक झलक, कि उन स्वाभाविक इच्छा है कि हम जानना चाहते हैं, वो बच्चे जानना चाहते हैं, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इतने सारे सवाल हैं इसी एक पैराग्राफ में, आपको 7-8 सवाल बच्चे जानना चाहते हैं। सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। स्वाभाविक है जब हम बच्चों को या बड़ों को किसी को भी कोई सवाल का उत्तर नहीं मिलता तो फिर वो आपस में ही बातचीत करके बच्चे कैसे होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, अंडे कैसे हैं। ये दोनों बच्चे केशव और उसकी बहन श्यामा आपस में बातचीत करते हैं और श्यामा पूछती है, कहती है, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। पेचीदा मतलब थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जटिल है, उलझा हुआ सवाल है, इसलिए वो शांत रहता है, चुप रहता है, उसका जवाब नहीं दे पाता। और इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती रहती है और वो अधीर होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। और फिर एक दिन 3-4 दिन के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे और उनके सामने एक सवाल पैदा हुआ, अगर बच्चे निकल आए तो वो खाएंगे क्या, अर्थात उनका चारा क्या होगा। और चिड़िया तो इतनी छोटी सी है, वो बेचारी इतने बच्चों के लिए कहाँ से दाना लाएगी, कहाँ से भोजन लाएगी। गरीब बच्चे भूख के मारे बेचारे कहीं चू चू करके मर न जाएं। और इस मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों बच्चे घबरा उठते हैं और फैसला करते हैं कि इस छज्जे पे, कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए और इससे होगा क्या। श्यामा कहती भी है, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना होगा। क्यों, तब क्यों जाएगी चिड़िया कहीं, क्यों भैया, बच्चों को धूप तो न लगेगी। श्यामा फिर पूछती है कि चारे का तो इंतजाम हो गया, भोजन का तो, कहीं ऐसा नहीं फिर उनको धूप लगे। केशव कहता, रे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वह बोला, हाँ तकलीफ तो होगी, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। और फिर वो दोनों निर्णय लेते हैं, आखिर फैसला लेते हैं कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और उनके पास थोड़े से चावल और पानी भी रख देना चाहिए,
ताकि वो आराम से भोजन पानी कर सकें। तो फिर लग जाते हैं दोनों बच्चे इस काम में, और क्या करते हैं, श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से थोड़े से चावल निकाल लाई, और फिर केशव ने जो एक कटोरी थी जिसमें तेल था उसको नीचे गिरा दिया और उसको अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से, चांदनी मतलब ऊपर जिससे छांव करनी है, वो कपड़ा कहां से आए। और फिर सोचते हैं अगर कपड़ा आ भी गया तो उस कपड़े को वो टिकेगा कैसे, उसको सहारा चाहिए कुछ ना कुछ, अर्थात उसके लिए उसको कुछ छड़ियां लगानी होंगी, तो वो कैसे लगाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहता है, उधेड़ बुन यानी कुछ कभी सोचता है कभी कुछ सोचता है, और आखिर में वो उसका भी हल निकाल लेता है और श्यामा से कहता है, जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है ना उसको उठा ला, और उसको, और ध्यान रखना कि अम्मा जी को इसका पता ना चले। वो श्यामा कहती है फिर, लेकिन वो टोकरी तो फटी हुई है बीच में से, उसमें से धूप आएगी। तो कहता कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो बड़ा है, तो वो झुंझला कर कहता है, तू पहले टोकरी तो लेके आ, उसका जो सुराग है उसका रास्ता मैं बंद करने का, उसका सुराग बंद करने का कोई ना कोई मैं रास्ता निकालता हूँ। श्यामा टोकरी ले आती है और उसमें जो सुराग था उसमें कागज ठूस दिया जाता है, और इस तरह से वो एक टहनी के सहारे उस टोकरी को अड़ाकर दिखाता है कि देखो हम इसको ऐसे रखेंगे जिससे कि धूप नहीं आएगी और धूप से बच जाएंगे। और ऐसे में जब वो सोचती, वाह भैया कितने चालाक हैं, भैया कितने चालाक मतलब कितने होशियार हैं यहाँ पे। और देखिएगा इस कहानी में बच्चों, आपने देखा होगा बातचीत में भी, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता भी लें उसके साथ साथ पढ़ें भी इसको, तो देखेंगे इसमें सवाल ही सवाल है। कहानी सवालों के माध्यम से ही आगे बढ़ रही है कि ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा। और इस तरह से वो एक दिन वहाँ पे समाप्त होता है, और एक अंश कहानी का कहिए कि यहाँ पे रुकता है। और फिर मौसम कैसा था, ये गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, और अम्मा जी ने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन आज बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी, क्यों, क्योंकि उनका मन तो बाहर छज्जे पे लगा हुआ था। अम्मा जी को कहना चाहिए कि बहलाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, एक तरह से दोनों चुपचाप दम रोक के आंख बंद किए हुए मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अम्मा जी सोएंगी वो अपना दरवाजे की जो सिटकनी है वो खोली और बाहर निकल आए, और अंडों की हिफाजत के लिए एक तरह से पूरी तैयारी होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया लेकिन उससे काम नहीं चला गया, शायद थोड़ा नीचे रह गया, तो वो नहाने की जो चौकी होती है बाथरूम के लिए, हमारे स्नान के लिए, वो भी उठा लाया और उस चौकी को नीचे रख के स्टूल उसके ऊपर रख दिया, और फिर डरते डरते उस पर चढ़ गया। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ लिया। इसमें जो स्टूल लाए थे उसकी जो चार टांग होती हैं वो थोड़ी सी इक्वल नहीं थी, बराबर नहीं थी, इससे वो हिल रहा था, और जैसे ही हिलता था तो केशव को गिरने का खतरा होता था, उसको बड़ी तकलीफ होती थी। और फिर वो उसको डांटता था चुपके से, मतलब दबी आवाज में डांटता था, क्योंकि वो छोटी है, कहता ठीक से पकड़ो इसको वरना उतर कर बहुत मारूंगा। और बेचारी श्यामा थोड़ा सा उसका ध्यान बार बार ऊपर लगा हुआ छज्जे पे, क्यों, क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि वो अंडे कैसे हैं, क्या है ऊपर। और जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई, और केशव ने देखा कि वहां थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पे तीन अंडे रखे हुए हैं। लेकिन ये उस तरह का घोंसला नहीं था जैसा कि सामान्य तो होता है, और वो घोंसला थोड़ा अलग लगा उसको। तभी श्यामा नीचे से पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं, कितने अंडे हैं। केशव कहता है कि तीन अंडे हैं लेकिन अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तभी वो श्यामा भी कहती है, भैया मुझे भी दिखा दो, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। पहले कहता हाँ हाँ दिखा दूंगा, पहले जा थोड़े से जो चीथड़े हैं वो ले आ ताकि मैं इसके नीचे बिछा दूं और ये आराम से फिर वो रखे रहें। श्यामा दौड़ कर जाती है और अपनी जो पुरानी धोती है उसका एक टुकड़ा ले आती है और उसको वो गद्दी की तरह तह करके वहां पे बिछा देता है। और एक बार श्यामा फिर कहती है कि भैया मुझे भी दिखाओ कैसे हैं। फिर कहता नहीं नहीं पहले तुम टोकरी दो, टोकरी भी दे देती है
उसके ऊपर छाया कर देते हैं वो लोग, और फिर जो पानी की कटोरी है और चावल के दाने हैं वो प्याली भी वहां रख देते हैं दोनों। और फिर वो कहता है कि पहले मैं इसको कर दूं, फिर मैं नीचे उतर आता हूं, फिर तुमको दिखाऊंगा। सब कुछ कर देते हैं वो और वो धीरे से उतर आता है। अब श्यामा कहती है, गिड़गिड़ाती है एक तरह से कि भैया भैया मुझे भी दिखाओ, हमें भी देखना है। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं भाई, अब तुम गिर जाओगी और तुमको चोट लग जाएगी। नहीं, वो कहती नहीं मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। लेकिन केशव उसको नहीं दिखाता और उसको ऊपर चढ़ाता नहीं। बार बार वो कहता नहीं, तू गिर पड़ेगी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी, अर्थात अम्मा मुझे बहुत मारेगी, कहेगी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे दिखा दो। तो कह रही क्या करेगी तू देख के, अरे क्योंकि वो बड़ा है, थोड़ा सा बड़े वाली भाव है कि वो बहन सारी सहायता करती है लेकिन फिर भी वो बड़ा है तो वो उसको नहीं दिखाता है। इसी बीच चिड़िया बार बार वहां आती है जाती है, लेकिन वो बार बार उड़ जाती है वहां से। और श्यामा फिर उसको थोड़ी सी शिकायत करती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, तो मैं अम्मा जी से कहूंगी, आपकी शिकायत लगाऊंगी एक तरह से। तो केशव उसको डांटता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो वो श्यामा कहती है कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, और गिर पड़ती तो चार सर ने हो जाते। ये चार सर होना, देखिएगा, एक हम बड़ा रचनाकार या कहानीकार कोई भी होता है, उसमें भाषा में जो एक रवानगी और ताजगी आती है, उसमें बीच बीच में मुहावरे भी इस्तेमाल करता है। चार सर होना ये मुहावरे की तरह होता है कि गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी, तो उसी तरह का भाव है इसमें। लेकिन वो श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, कम से कम देख तो लेती मैं। तो तभी अचानक दरवाजा खुलता है और माँ बाहर आती है। फिर कहती है अरे तुम दोनों बाहर कब आ गए, मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर नहीं निकला, लेकिन दरवाजा किसने खोला। अब सवाल ये था कि श्यामा चाहती तो उसको बता देती कि केशव ने खोला, लेकिन श्यामा चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्यामा कि मैं बता दूं और केशव पिट जाए तो भैया पिट जाए। इस चक्कर में वो चुप रहती है। या दो कारण थे, एक तो उस भैया की पिटाई का, और दूसरा कारण ये था कि कहीं श्यामा को ये लग रहा था, एक तो प्रेम था भाई के प्रति, और दूसरा ये था कि इस कसूर में इस कहना चाहिए जो गर्मी के में बाहर जाके उन सारी जो कार्यक्रम किया उन्होंने, इसमें वो भी बराबर की ही कसूरवार थी, वो भी बराबर की ही दोषी थी। इसीलिए वो चुप रहती है और वो दरवाजा बंद करके सो जाते हैं आराम से। दोपहर में माँ उसको हवा करती है और वो आराम से सो जाते हैं। फिर अचानक 4 बजे जब उनकी नींद खुलती है तो श्यामा दौड़कर बाहर कार्निश के पास जाती है और देखती है कि अरे ये क्या, टोकरी का कहीं पता नहीं है। और वापिस जाती है तो देखती है कि अंडे तो नीचे पड़े हैं और शायद बच्चे उड़ गए हैं। श्यामा को यही लगता है, वो उल्टे पांव दौड़ती है, यानी कि तुरंत वापिस आती है और भैया को जगाती है और कहती है भैया भैया उठो बाहर देखो कि बच्चे तो उड़ गए, अंडे नीचे पड़े हुए हैं। और बाहर आके केशव देखता है तो वो तो सचमुच अंडे टूटे हुए नीचे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने जैसी चीज है वो बाहर निकली हुई है, और उसके साथ साथ जो पानी की कटोरी और चावल की कटोरी है वो भी टूटी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, चेहरे का रंग उड़ना मतलब वो डर जाता है और आंखों से अपना सहमी हुई आंखों से डर के मारे नीचे देखता है। श्यामा पूछती है क्या भैया बच्चे उड़ गए क्या, तो थोड़ा उदास होके करुण स्वर में वो कहता है अरे नहीं अंडे तो टूट गए। बच्चे कहाँ गए, श्यामा फिर पूछती है, गए तेरे सर में, देखती नहीं अंडों से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बनता, अर्थात जब वो अंडे टूट गए उसमें से जो सफेद सफेद है पानी निकला है वही उसकी तरफ बता रहा है कि इन्हीं से बच्चे बनते। और तभी देखता है कि माँ हाथ में एक सोटी लिए हुए आती है कि तुम दोनों फिर बाहर धूप में क्या कर रहे हो, और श्यामा कहती है अम्मा चिड़िया के अंडे टूट गए। अम्मा देखती है और उनको डांटती है कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा इसीलिए वो टूट गए, जोर से डांटती है उनको। अब श्यामा को भैया पे कोई तरस नहीं आता, वो भी सारी कहानी उसको बता देती है कि शायद भैया ने उसको अंडों को ठीक से नहीं रखा होगा और वो इससे गिर गए और इसी से वो टूट गए। लेकिन वो कहती है कि अम्मा अम्मा भैया ने अंडों को छेड़ा था
और केशव बेचारा डरा हुआ भीगी बिल्ली बन के चुपचाप बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है वहां पे। और माँ फिर पूछती है, आखिर तू गया कैसे वहां पे, पहुंचा कैसे वहां तक। कि फिर श्यामा बताती है कि इन्होंने, हम लोगों ने चौकी स्टूल पे रखी। और केशव भी कहता है कि मैं तो चौकी, लेकिन जो स्टूल है वो तुमने ही पकड़ा हुआ था। फिर माँ आखिर में सारी बात को समझते हुए कहती है कि तू, केशव को कहती है, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी भी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। अर्थात किसी भी पक्षी के अगर हम अंडों को हाथ से छू देते हैं तो वो उसकी गंध को पहचान के, यानी कि वो अंडे एक तरह से खराब हो जाते हैं और वो चिड़िया फिर उसके ऊपर नहीं बैठती और वो एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर अंडे चिड़िया उनको दोबारा से नहीं सहती, उनके ऊपर नहीं बैठती। और इसीलिए चिड़िया ने वो अंडे नीचे गिरा दिए, माँ कहती है। और क्या करती वो चिड़िया, और इसका पाप किसके सर चढ़ेगा, इसका पाप चढ़ेगा केशव के सर। हाय हाय, तुमने तीन जाने ले ली दोस्त, तुमने, माँ एक तरह से केशव को डांटती है। केशव रोनी सूरत बनाकर कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। माँ फिर सोचती है कि शायद बात ये भी कुछ और करना चाहते थे, कुछ और हो गया। और फिर वो हंसती है, लेकिन इस बात का केशव को कई दिन तक पछतावा रहता है, पश्चाताप रहता है। और बात क्या हुई कि अंडों की हिफाजत करने के जोग में, अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में, अंडों को सहज कर रखने के कारण, इच्छा के कारण उनका सत्यानाश हो गया, वो उनका सत्यानाश कर डाला। और केशव को इस बात का बड़ा पश्चाताप होता है, वो उनको बार बार, कभी कभी तो वो रो भी पड़ता है। और फिर उसके बाद चिड़िया कभी दिखाई नहीं दी वहाँ, दोनों की दोनों चिड़िया वहाँ से दोबारा कभी नहीं आई। मित्रों, कहानी बहुत सहज है, कहानी बहुत प्यारी है, कहानी हमारी जिज्ञासा से जुड़ती है, कहानी में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, बच्चे हर बात को जानना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। और वो, लेकिन बड़ों के पास कई बार उन सवालों का जवाब देने की फुर्सत नहीं होती। जैसे अगर इसी कहानी को हम देखें, अगर हम पहले माँ या पिताजी में से दोनों में से कोई ये बात बता देता कि ये अंडों को हमें नहीं छूना है, तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती। लेकिन बच्चों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो हर बात का कारण जानना चाहते हैं और हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं, उनमें बाल सुलभ जिज्ञासा होती है। और इस जिज्ञासा को पूरा करने के कारण ही कई बार उनसे बाल सुलभ गलतियां भी होती है। और इस कहानी में ही एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि भाई बहन का आपसी रिश्ता भी देखने वाला है। केशव बड़ा है, वो बहन से सारे काम तो कराता लेकिन उसको अंडे देखने नहीं देता। इसी प्रकार वो सारे एक तरह से उसको डांटता भी है और बीच बीच में आप उसकी झलक पाते हैं। और जैसा मैंने कहा था, इस कहानी में आप कुछ मुहावरे भी देखेंगे, जैसे कि चार सर न हो जाते, चेहरे का रंग उड़ गया, भीगी बिल्ली बन गया, ये बहुत सारे, आप इसको जब कहानी को दोबारा सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और मैं फिर एक बार आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चे वास्तव में दोस्त की भूमिका निभाना चाहते थे, वो चिड़िया और उसके अंडों की सहायता करना चाहते थे, लेकिन नादानी में वो गलती कर बैठे और वो अंडे नष्ट हो गए। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी शायद नादान दोस्त है। अब आपके लिए मित्रों बहुत सारे आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे और आने ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कहानी सवालों से भरी हुई है, आप इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे तो कई बार केवल जवाब की तलाश मत करिए, सवालों को भी देखिए। मैंने इस कहानी को जब आज पढ़ा फिर से आपके लिए दोबारा, तो मुझे इतनी लंबी सूची मिली सवालों की, मुझे तो मज़ा ही आ गया। आप भी ढेर सारे सवाल बनाइए, इसमें कम से कम 30-40 सवाल हैं, एक एक पैराग्राफ में 8-10 सवाल हैं। आप उत्तर नहीं, केवल सवाल बनाइए, फिर
उत्तर उनके अपने आप आएंगे। जैसे अगर हम इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास हैं वो भी देखेंगे, तो अगर आपने कहानी का आनंद लिया

0: कहानी को अच्छे से समझा, कहानी को समझा, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, जैसे कि शुरू में ही उसके बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अंडे कैसे होंगे, पहला सवाल ऐसा ही है प्रश्न अभ्यास में। और दूसरा सवाल क्या है, केशव ने और श्यामा ने वो टोकरी, पानी, चिथड़े क्यों रखे, वो भी उनकी सहायता के लिए। और एक सवाल ये भी कि भाई अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनसे दोस्ती निभाई या उनसे नादानी हो गई। ये बहुत सारे सवाल आपको इस कहानी में दिखाई देंगे और आप नए सवालों की सूची बनाइए, आप उससे भाषा सीखेंगे, सवाल बनाना सीखेंगे, उत्तर खोजना सीखेंगे, और साथ ही साथ आप चाहें तो एक नई कहानी भी बना सकते हैं कि अगर इस कहानी में नया मोड़ दे सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए अंडे नहीं गिरते तो फिर उसके आगे कहानी कैसे चलती। आप बहुत सारे सवाल इसमें हो सकते हैं, आप कल्पना करके देखिए, जो कि अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न अभ्यास में भी दिया हुआ है कि ये गर्मी के दिन थे, सर्दी के दिन होते तो कैसा होता, और बहुत सारे इसमें कहना चाहिए व्याकरण से जुड़े हुए भी सवाल हैं। मित्रों, व्याकरण हम बार बार कह रहे हैं कि संदर्भ के साथ, पाठ के साथ उसको मिलाकर देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगी। जैसे अगर आप इसमें संज्ञा और विशेषण देख रहे हैं, विशेषण ही देख लीजिए, बच्चे कैसे तगड़े, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सब्जी कैसी है, मसालेदार है, अर्थात आप एक बार उन चीजों को ध्यान से देखेंगे कि जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, वो संज्ञा हो, स्वरनाम हो, और क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। आप इस पाठ को धीरे धीरे पढ़िए, अभ्यास को थोड़ा सा देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, आप इसका आनंद ले पाएंगे। हम भी चाहते हैं कि कहानी है तो कहानी का आनंद ले। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या क्या हुआ बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
6: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
7: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।

0: नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और खास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद भी जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहां से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। Song credits, singers Neha Kakkar, Romy, Arun and Ikka, recreated Tanishq Bagchi, lyrics Shabbir Ahmed, only on Tips Official. So let's enjoy it, only on Surushada 90.8 FM.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: आपने को गीत सुना मेरा?
5: सुना है जी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे है, भूखो है का?
2: हाँ भूखी लग रही होएगी।
1: तो याए शहद दे दे।
2: हाँ तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
3: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बार बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए, तो इसलिए अपने बालक स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
4: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से जनहित में जारी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूं। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: Soro Sharda.
0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So,

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया बीमारी बुखार से बची तो बेटा।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व तो युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोवा, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
3: गगन कोकरी फतेह।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो।

गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आ रू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रही नी,
2: हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओके रा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।